0: पति न की चिकन तेरी यकी, पति न की चिकन तेरी यकी, पति न की चिकन तेरी यकी, तू हता गेरे मकी,
1: मैं हता कवा सकी,
0: quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70,
2: pati na ki chicken teriyaki,
0: un billete, dos billetes, una tienda de billetes, la más dura que le mete.